0: तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आम कोमी नंबुमंगा केर संजयं बाई सेरो फुकतान नंबुमाइंस फावटन सेने बुमाइंस अनोटन समास निनिन नमीच ट्राम सोफा अंड्रासन रासलाव टेनिस फिजरा न ताने ते प्यांत चते ओमनी रोकुल ते ओयन ना तमले ले फोलुन निस फंड्राइ सना ना रन अंड्राइ ते ओटन फिट फिटिन ले प्रेस ना इस मुझांत ते ना प्रेस ना फोटन ए कार्टे मोबिल ते फिर पेरां फुटन ले सुरात ना टेन टेन से सेम बस सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वो तो ये वेतना मेनो तुझी सुना तो न फुंड का ये सिस्टी लो इज़

0: तुमको वाह भी
1: लक्ष्मी नम पास के साने भगवान या ते अंदे इसे ब्लॉक सही इसे ट्रॉन्ग यू सही जो ते ना प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसे कुछ ते बना बोल तो ते सही ना लोग ना सकता ते सही जान सफ़ेद नहीं हुआ ना ट्रॉन्ग फ़ैलाम बोल नहीं जाने वचनों में नहीं मिस सके लाना करो आ ते फ़ैलाम बोल नहीं वचनों में ना वो इसे ते सही नहीं मेरे किस ते मलो
2: I'm so fearful in that channel. They say I want to talk at some night, but the Manzanaka, Sunday Mandin. I want to talk at some time, Monosit, some Sagasaka, that's some folks, that's some in. How them, Monos, the Mahatan Funaya, the Manetan Malakas, Rizadit, Manos, Nakura, Ramietwa, the Salem, Baita, the Navy, Ingalem, Bosis and Atolu, Fokarita. Salama, I wouldn't say Salama, so that
3: Savakayan, Afaka Mundetik Panutik, Mila Fibipan and Tantik Hoktiki Pipak. Here a piva, here a feeder, and a phone, and if an antelia naira to Mati and Dendiran, so tools or infa here at the Amira to toot of a chicken gazo if an amam sonny. Mson of here in a ticket at it of a latakalal chick.
4: Rokramokadamus and then a car. Semba arsiti andwa fa kiveru tanam ba andruna tosan ba kwanam ba wani tukatan. Ani memas na vata tena mutsu manzaka mud. Mandi tuli tafana isanan. Mutsu mo sani arakli jit mutsu mutsu mrumbi full mud di semba arsikele nin ba. Nisa rana top ni tu orang nak tulis kita kan. Soalnya kan tentang fitrik Chelsea su tumbuh tu tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musim tu, ni mifafa ke zonnya so tom so ni mana contohnya mana mana.